0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और सख्त सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद भवन परिसर में मंत्रिमंडल की बैठक में इस मसौदे को स्वीकृति दी गई। ये विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। एनटीए ने महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

0: एनटीए ने बताया कि ये उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है, जिसे प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। एनटीए ने संविदा आधार पर महाप्रबंधक के 4 पदों के लिए अधिसूचना जारी की है। इनमें से प्रत्येक की प्रारंभिक अवधि 3 वर्ष की होगी। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है। दिल्ली पुलिस ने परीक्षा संबंधी पेपर लीक और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के अपार समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामले की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटक्कल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रोमानिया की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। ये सम्मान उन्हें विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि ये सम्मान दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलो भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। टीम ने पहले मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: सुवरा जाऊन 5 मिनट जातात। 105.4 मेगाहर्ट्ज तसेच न्यूज ऑन एअर ह्या आमच्या ऐपावरील तुम्ही ऐकतात FM रेनबोचे प्रसारण। मोगाळकुप्यानो मुखार वच्चे पहिली ओळख करून घेऊया आज वेत्रावपाच्या कार्यावळींची। ही रूपरेषा सांगून जातच सुवरा जाऊन 10 मिनिटांचे ऐकू पाकरावात भक्ती संगीत कार्यावळ पुष्पांजली। शास्त्रीय संगीत सुवरा 32 मिनिटांचेर कार्यावळींत आज बेगम परवीन सुलताना हांचे गायन राग मंगल भैरव आणि अहिर भैरव ऐकूपाक मेळटले। 7:05 मिनटांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान इंग्लिशीतल्यो खबरो आमी सहक्षेपीत करतले, तर ताचे उपरांत तुमची आमची भेट घडटली म्हणपाक नमस्कार गोवा। आज ऐकात विचार किरण दिनविशेष। प्रादेशीक खबरो 7:25 मिनटांचेर, 7:30 मिनटांचेर कॉमनवेल्थ खेळाचे डेली हायलायट्स आणि 7:45 मिनटांचेर सरभोवतड सादर करतल्यो पद्मश्री पार्सेकार। आयची समाचार प्रभात दिल्ली केंद्रावेल्यान सदाभशेन 8:00 वरांचेर, तर वेळ कातारांचो 8:15 सावन मजगती 8:40 मिनटांचेर कोंकणीतल्यो राष्ट्रीय खबरो आयकुपाक मेळटल्यो। चित्रसंगीत फिल्मी गीतां आयकुपाक रावात 9:00 सावन। FM रेनबोच्या ह्या प्रसारणातल्यान तुमचे खातीर आसतली 10:05 सावन सहक्षेपीत केल्ल्यो दिल्ली केंद्रावेल्यान इंग्लिशीतल्यो खबरो, तर 10:10 सावन मराठी भक्तीगीत, 11:05 कोंकणी सुगम संगीत। दनपारचे सभेंत 12:10 आयकुपाक रावात हिंदी फिल्मी गीतां, आमची कार्यावळ चित्ररंजन। वेळ कातारांचो जेवता जेवता सदाभशेन 1:05। 2:00 भावगीत, तर 2:30 सावन मुखेल खबरो आयकल्या उपरांत तरेकवार पश्चिमी संगीताच्यो कार्यावळी तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो। हातूंत आयकात सुरवेक जुकबॉक्स।

0: और उन सपनों की जो भारत से हजारों किलोमीटर दूर आकर सांस ले रहे हैं। एक वक्त था जब हिंदुस्तान की पहचान किसी और के शासन के साए में डूब गई थी, लेकिन उस दौर ने हमें एक चीज जरूर सिखाई, अपने हक के लिए खड़ा होना, अपने हिस्से की जगह मांगना और उसे अपने दम पर हासिल करना।
1: आज वही भारत उसी दुनिया के सामने अपने खिलाड़ियों के दम पर खड़ा है, बराबरी से आंखों में आंखें डालकर। और जब कोई भारतीय खिलाड़ी यहाँ पोडियम पर चढ़ता है तो सिर्फ एक पदक नहीं जीतता, उस छोटे से गांव, उस कस्बे, उस घर तक भी एक भरोसा पहुंचाता है, जहां बैठा कोई आम इंसान शायद पहली बार सोचता है हम भी किसी से कम नहीं।
0: और इस बार शायद इस भरोसे को नए चेहरे मिले हैं। As you know, popular sports like badminton, hockey, cricket, table tennis and wrestling are not a part of Commonwealth Games of the 22nd Commonwealth Games in Glasgow. But the absence of these sports have been a blessing in disguise for some of the lesser known sports. Para power lifting, artistic gymnastics, swimming and lawn bowls are now making headlines, and our athletes representing India in these sports are showing what they are capable of.
1: ये वो खेल और खिलाड़ी हैं जिन्हें अक्सर बड़ी सुर्खियों के पीछे जगह बनानी पड़ती थी। इस बार मंच उनके सामने है, अब देखना ये है कि कौन इस मौके को दोनों हाथों से थामकर सुर्खियां अपने नाम कर लेता है। तो आइए जानते हैं राष्ट्रमंडल खेल 2026 के दूसरे दिन कौन कौन से खिलाड़ियों ने सुर्खियां बटोर ली हैं।
0: सबसे पहले बात पैरा पावर लिफ्टिंग की। पैरा पावर लिफ्टिंग में खिलाड़ी सिर्फ वजन नहीं उठाते, वो उन सीमाओं को उठाकर एक तरफ रख देते हैं जिन्हें दुनिया अक्सर उनके सामने खड़ा कर देती है। भारत में पैरा खेलों ने पिछले कुछ सालों में अपनी अलग पहचान बनाई है, और शायद इस मंच पर एक और जीत किसी को ये यकीन दिला दे कि उसकी ताकत उसकी कमजोरी से कहीं बड़ी है। इसका उदाहरण स्थापित किया भारत के झंडू कुमार ने। पुरुषों की पैरा पावर लिफ्टिंग में 72 किलोग्राम के भार वर्ग वाले झंडू कुमार ने 190 किलोग्राम वजन उठाया, जिसके चलते 130.9 अंक हासिल किए। इसके साथ ही झंडू कुमार को कांस्य पदक हाथ लगा और कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की पदक तालिका में भारत का खाता खुला।
2: ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रिप्रेजेंटिंग इंडिया, झंडू कुमार।
0: ग्लासगो जाने से पहले ही आकाशवाणी से हुई खास बातचीत में झंडू कुमार ने बताया था कि उनके हौसले बुलंद है और वो अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार।
3: पिछली बार भी हमने कोशिश किए थे, दिल से कोशिश किए थे कि अच्छा ही करेंगे। एशिया चैंपियन भी अच्छा किए और वर्ल्ड कप में भी अच्छा किए, इस बार कॉमनवेल्थ में भी अच्छा करेंगे।
4: इतना वजन उठाने के टारगेट रखा, वजन उठाने का
3: देखिए अभी वहाँ जाएंगे, वहाँ वार्म अप एरिया में जब पता लगता है कि हम कितना, मतलब यहाँ तो 210-220 कर रहे हैं, मगर वहाँ मौसम के हिसाब से थोड़ा देखा जाता है वहाँ पे।
0: और झंडू कुमार ने कर दिखाया भी, पैरा पावर लिफ्टर से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद हम सभी को थी। नई दिल्ली में हुई सेंड ऑफ सेरेमनी के दौरान ही कोच राजेंद्र सिंह रेहलू ने इसकी भविष्यवाणी कर दी थी।
5: कॉमनवेल्थ में अच्छी संभावना है, हमारे सारे खिलाड़ी फिट है, हम कोशिश है हमारी इस बार पावर लिफ्टिंग में अच्छे मेडल आएंगे। और बाकी जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बोला ही है, देवेंद्र जी ने, कि बहुत बड़ा दल जा रहा है इस बार, पहली बार इतना बड़ा दल जा रहा है, तो एक नया रिकॉर्ड बनेगा, इंडिया बनाएगा, मुझे श्योर है कि हम जीत जाएंगे।
0: ये पदक पुरुषों की हैवी वेट कैटेगरी में आया। इसी कैटेगरी में भारत के सुधीर ने भी हिस्सा लिया और 91 किलो के सुधीर ने 183 किलो का भार उठाया और 114.1 अंक हासिल किए। सुधीर को पदक भले ही ना मिला हो, लेकिन जब जब एक पैरा एथलीट शारीरिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े मंच पर पहुंच भारत का प्रतिनिधित्व करता है, तो वो समाज में सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है।
1: A quintessential example of this was given on Friday by Ashok in men's para power lifting. Ashok registered his personal best by lifting an impressive 200 kgs and earning 143.8 points. Alas, he finished fourth and missed out on a podium finish.
0: In the same event, Paramjeet Kumar lifted 176 kgs and finished seventh.
1: वहीं महिलाओं में उम्मीदें जसप्रीत कौर और सुमन देवी से थी।
6: मैं जसप्रीत हूँ, पैरा पावर लिफ्टर। अभी मेरे रिसेंट हमारा एशियन चैंपियनशिप हुआ था, वहाँ मेरे ब्रॉन्ज मेडल लिया और उसके बाद अभी अच्छी परफॉर्मेंस बढ़ी है, ऐसे मुझे उम्मीद है कि मैं मेडल लेके आऊँ।
0: हाउएवर इट वॉज अगेन अ स्टोरी ऑफ सोन ईयर येट सो फार। जसप्रीत कौर ने 100 किलो वजन उठाया लेकिन उसके बावजूद वो चौथे

0: स्थान पर रही और पदक से चूक गई। उनके बाद सुमन देवी ने 103 किलोग्राम भार उठाने के दो प्रयास किए और मेडल पर निशाना लगाना चाहा, लेकिन उनके दोनों ही प्रयास असफल रहे और उन्हें छठे पायदान से संतोष करना पड़ा।
1: ऐसी ही कहानी रही कस्तूरी राजपनी की भी, जिन्हें 3 असफल प्रयासों के बाद प्रतियोगिता से बाहर हो जाना पड़ा।
0: अब बात करते हैं बॉक्सिंग रिंग की, जहां पर हर एक पंच भारतीय मुक्केबाजों के हौसले, उनकी तैयारी और उनके जोश को बयां करता है। भारत के जादूमणि सिंह ने इसी का परिचय देते हुए पुरुषों के 55 किलोग्राम भार वर्ग में मेजबान टीम के आरन कलन को सर्वसम्मति से मात दी, यानी पांचों के पांचों जज का फैसला जादूमणि सिंह के हक में रहा। इसके साथ ही जादूमणि ने राउंड ऑफ 16 में प्रवेश पा लिया है। अपना पहला कॉमनवेल्थ गेम्स खेल रहे जादूमणि क्या इस बार इतिहास रचेंगे?
1: अब बात करते हैं लॉन बॉल्स की, जहां पिछले संस्करण में भारत ने 1 गोल्ड 1 सिल्वर जीता था। इस बार मानो हमारे एथलीट स्थान कर आए हैं कि लॉन बॉल्स की गूंज भारत की हर गली में सुनाई देनी चाहिए। पिछली बार की सफलता को देखकर लॉन बॉल्स के खेल में शुरुआत करने वाले पुतुल सोनेवाल ने शुरुआत ही इस प्रकार की है।
2: नमस्कार, मैं पुतुल सोनेवाल असम से हूँ। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा ये फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम है।
0: ऑन डे 1 पुतुल सोनोवाल डिफीटेड आउटडोर वर्ल्ड चैंपियन रायन बेस्टर ऑफ कनाडा। ही कंटिन्यूड द विनिंग वेज ऑन डे 2 एज वेल। इन फ्रंट ऑफ हिम वाज द चैलेंज ऑफ सेलिक अलेक्जेंडर ऑफ फॉकलैंड आइलैंड्स। इन द फर्स्ट सेट सोनोवाल वाज ट्रेलिंग, बट ही केम बैक फ्रॉम बिहाइंड टू टाई दैट सेट एंड देन रजिस्टर्ड एन एम्फैटिक विक्ट्री इन द सेकेंड सेट।
1: जैसा आप जानते हैं कि 2022 में भारत की महिलाएं लॉन बॉल्स में स्वर्ण पदक लेकर आई थी। उस टीम का हिस्सा रही रूपा रानी टिर्की और पिंकी की जोड़ी ने विमेंस पेयर में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। पहले दिन माल्टा को टाई ब्रेकर में हराने के बाद दूसरे दिन इस जोड़ी ने दक्षिण अफ्रीका को 2 सीधे सेटों में मात दी। इनका अगला मुकाबला टोंगा से आने वाली मिलिका नेथेन और पेरिस बेकर की जोड़ी से है।
0: पिंकी ने तो ग्लासगो जाने से पहले ही बता दिया था कि भले ही इस बार ये प्रतियोगिता पिछली बार की तरह नेचुरल ग्रास के बजाय कारपेट वाली घास पर हो रही हो, लेकिन उनका इरादा पोडियम फिनिश से कम का नहीं है।
3: हमने जो हिस्ट्री बनाई थी, क्रिएट की थी, हम इसको रिपीट करने की कोशिश करेंगे। किसी न किसी तरह किसी भी मेडल पे पोडियम के लिए जरूर आएंगे कि हम अपना देश को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी लोगों ने हमारे से एक्सपेक्टेशन रखी है, उस एक्सपेक्टेशन को हम फुलफिल कर पाए।
1: मेंस 100 मीटर फ्री स्टाइल पैरा स्विमिंग के फाइनल में क्वालिफाई होकर पहुंचे रवि वीरा वेंकटा भवानी कार्तिक टॉप 3 की रेस से कुछ पीछे रह गए। उन्होंने मेंस 100 मीटर फ्री स्टाइल के फाइनल में 4th स्थान पर और वहीं उसी प्रतिस्पर्धा में अली इमाम ने 7th स्थान पर खत्म किया और इसी के साथ दोनों खिलाड़ी पदक की रेस से बाहर हो गए।
0: दूसरी तरफ पुरुषों के 50 मीटर बैक स्ट्रोक में श्री हरि नटराज सेमीफाइनल तक तो जरूर पहुंचे, लेकिन अपनी सेमीफाइनल की रेस में उन्होंने 25.29 सेकंड का समय लिया, जिसके चलते वो 8 स्विमर्स में 7वें पायदान पर रहे। इसी प्रतिस्पर्धा में दक्षिण अफ्रीका के पीटर कुजिया ने 24.29 सेकंड का समय लेकर नया गेम्स रिकॉर्ड स्थापित किया। जिम्नास्टिक्स में तपन मोहंती, स्वातिश केपी, तपेश्वर नाथ दास और योगेश्वर सिंह पुरुषों की टीम फाइनल और इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन राउंड में भारत का रिप्रेजेंटेशन करने उतरे। प्रदर्शन सराहनीय रहा, लेकिन मेडल तक का सफर तय नहीं कर पाए।
1: आज तीसरे दिन यानी शनिवार 25 जुलाई को मंच दोबारा सजेगा। आइए जानते हैं कौन कौन से खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं।
0: 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल में टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए उतरेगी भारतीय महिला टीम। 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल यानी 3 खिलाड़ी, 1 बास्केट और व्हीलचेयर पर दौड़ता पूरा मुकाबला। यहाँ रफ्तार भी है, टक्कर भी है और हर शॉट के साथ जीत की उम्मीद भी। भारतीय टीम में शामिल हैं मीनाक्षी हरिचंद्र जाधव।
4: कॉमनवेल्थ गेम एक बहुत बड़ी गेम है। जब से मैं स्पोर्ट्स में आई थी, मेरा जो भी हेल्थ इश्यू था वो 99% रिड्यूस हुआ है। मेरे भाई को लगता है कि गेम में क्या मिलता है तुमको, उससे अच्छा अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम करेगी। बट

0: कहीं पे भी जाती हूँ, कुछ गीत के आ जाती हूँ तो वो थोड़ा गर्व से बोलता है कि ये मेरी बहन है।
1: लक्ष्मी रायप्पा रायनवर।
2: मैं इंटरनेशनल व्हीलचेयर बास्केटबॉल प्लेयर। मेरा फैमिली बहुत खुश हो, फैमिली बहुत सपोर्ट किया था।
1: रीना रमेश।
3: बास्केटबॉल खेलना शुरू किया 2019 में। इसकी जानकारी मुझे मेरे एक एक्स कलीग से पता चली थी। इट वॉज लाइक हम एक टीम स्टार्ट कर रहे हैं पुणे में, क्या आप ज्वाइन करना पसंद करोगे? आई नेवर इमेजिन की जो मैंने एज अ फन ज्वाइन किया था, इट विल टेक मी टू द कॉमनवेल्थ गेम्स।
1: इरेंगबाम रितु चानू।
4: इरेंगबाम रितु चानू, मैं मणिपुर से हूँ।
1: हर खिलाड़ी अपने साथ एक कहानी लेकर आया है, दर्द की, संघर्ष की और उन सीमा को पीछे छोड़ने की जिन्हें दुनिया ने कभी उसकी किस्मत मान लिया था।
5: इंडिया विल प्ले देयर फर्स्ट ग्रुप स्टेज मैच अगेंस्ट वेल्स एट द SEC सेंटर।
1: बॉक्सिंग में पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए उतरेंगे सचिन। राउंड ऑफ 32 में उनके सामने होने वाले हैं कनाडा के कियोमा अल अहमदिया। रिंग में हर पंच के साथ सिर्फ ताकत नहीं, हिम्मत भी परखी जाएगी, क्योंकि यहाँ एक बार कहानी बदल सकता है और सचिन इस बात को बखूबी जानते हैं और इसीलिए डट कर उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियाँ की है।
6: तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया। अपने अपोनेंट्स के सारी उनकी वीडियो देख रहे हैं, गलतियों पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तैयारी चली हुई है। सभी के गोल्ड आने हैं।
1: एक बार फिर भारतीय प्रशंसकों की नजरें होंगी लॉन बॉल्स पर, एक ऐसा खेल जहां शोर कम है, रफ्तार कम है, लेकिन हर गेंद के साथ जीत की उम्मीद धीरे धीरे अपने निशाने की ओर बढ़ती है। पहले दो मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले पुतुल सोनुवाल मलेशिया के इज्जत जुल केपले से भिड़ेंगे और जैसा हमने बताया वुमेन प्लेयर्स में रूपा रानी टिर्की और पिंकी की जोड़ी का सामना टोंगा से आने वाली टीम से होगा।
5: स्विमिंग पूल में भारत के लिए उतरने वाले हैं आर्यन नेहरा और धक्षण शशि कुमार। टॉल क्रॉस स्विमिंग सेंटर में ये दोनों तैराक पुरुषों की 400 मीटर फ्रीस्टाइल प्रतिस्पर्धा में शिरकत करते नजर आएंगे। धक्षण हीट 3 में और आर्यन हीट 4 में हिस्सा लेंगे। यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कर फाइनल में प्रवेश पाने की कोशिश होगी।
1: फाइनल मुकाबला भी आज ही खेला जाएगा। उसके बाद नजरें होंगी आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में महिलाओं पर। हवा में उड़ते शरीर, जमीन पर टिकता संतुलन और इन चंद पलों में ताकत और लचक का ऐसा खेल जिसे देखकर आंखें ठहर जाएं।
5: आज इस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने उतरेंगी प्रतिनायक निशिका अग्रवाल, प्रोशिता समानता और इशिता रिवाले।
1: चलते चलते रुख करते हैं मेडल्स टैली का।

0: दीपति नायक, निष्का अग्रवाल, प्रोशिता समानता और इशिता रिवाले।
1: चलते चलते रुख करते हैं मेडल्स टैली का। आखिरी समाचार मिलने तक भारत एकमात्र पदक के साथ 9वें स्थान पर बना हुआ है। वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की पदक तालिका में इस वक्त शीर्ष स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, जिनके पास 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 4 कांस्य के साथ कुल 10 पदक हो चुके हैं। दूसरे पायदान पर नाइजीरिया है, जिनके 3 स्वर्ण पदक और 3 रजत मिलाकर कुल 6 पदक है। ऑन द थर्ड स्पॉट इज होस्ट स्कॉटलैंड विद 2 गोल्ड मेडल्स एंड 2 सिल्वर मेडल्स, टोटल मेडल्स 4। इंग्लैंड हैज 1 मोर, दे हैव 5 मेडल्स इन टोटल। हाउएवर दे आर प्लेस्ड एट नंबर 4 बिकॉज दे हैव 1 लेस गोल्ड मेडल दैन स्कॉटलैंड। अपार्ट फ्रॉम दीज 4 नेशंस, साउथ अफ्रीका इज द ओनली वन टू ऑल्सो विन अ गोल्ड मेडल। विल इंडिया बी एबल टू क्लाइंब अप द टैली एंड गेट ऑफ द मार्क इन द गोल्ड मेडल एंड द सिल्वर मेडल कॉलम? वी विल नो सून।
0: हर दिन कोशिश जारी है। भारत के एथलीट्स 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स में जज्बे और जुनून की कहानी लिख रहे हैं। हो सकता है स्कॉटलैंड की ठंडी हवाओं में भारत को अपना नया सितारा मिल जाए।
1: आकाशवाणी पर लगातार आप कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। तो सुनते रहिए आकाशवाणी।
0: प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ प्रेरणा और दर्पण की खास रिपोर्ट।
2: द कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 दिसपट्टो नियाळ तुम्ही निघतोच ऐकलो। तुम्ही ऐकतात आकाशवाणी पणजी आणि ही जाऊन असा FM रेनबोची सेवा। मोगाळ कुप्यानो ऐकत रवात तुमच्या आवडीचं हो चॅनल आणि नमस्कार गोवा हे कार्यावळींत आता आम्ही घेऊन येता आयची सरभोवतण।
3: नमस्कार, सरभोवतण कार्यावळींत माये मोगाचो येवकार देता हांव पद्मश्री गुरुदास पार्सेकार। आयज एकादशी आशिल्ल्यान तुमकां सगळ्यांक एकादशीची हुनहुनीत परबी। ह्या खाशेल्या उत्सवाक महाराष्ट्रांत तशेंच गोंयांत खाशेलें म्हत्व आसा। आयज चडशे भक्त उपास करतात, भजन किर्तन हरिपाठ करतात। आषाढी एकादशी आमकां श्रद्धा, धीर, शिस्त, सेवा, समता आनी एकचार हाचो संदेश दिता। वारयेंतल्यान आमकां ते पळोवपाकूय मेळटा। आयच्या दिसा विठ्ठल देवाचें नांव घेवन संतांनी शिकयल्ले बरे गुण आपणावन मुखार सरपाचो निश्चय करुया।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
3: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। कहा, आपसी संबंध और अधिक घनिष्ठता के साथ आगे बढ़ेंगे। सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक जहाज एमवी ओमर्फी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। हमले में एक भारतीय नाविक की मौत। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। झंडू कुमार वेट पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
5: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।
6: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
7: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
4: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर सीजेपी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है। उन्होंने बताया कि सीजेपी ने 3 प्रमुख मांगे रखी हैं और पेपर लीक रोकने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं।
8: बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 शामिल हुए।
4: दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है।
9: दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अलग अलग प्राधिकारियों की ओर से आयोजित होने वाली पब्लिक परीक्षाओं से जुड़े अपराधों की जांच तेजी से और पेशेवर तरीके से विशेष कार्यबल द्वारा की जाएगी। इनमें संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के साथ साथ केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग और स्टाफ के भर्ती के लिए उनसे जुड़े हुए और अधीनस्थ कार्यालय शामिल है। जाँच के अलावा विशेष कार्यबल मुकदमा चलाने वाली एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल भी बनाए रखेगी ताकि तेजी से मुकदमा चलाया जा सके और ये पक्का किया जा सके कि ऐसे मामलों में सुनवाई रोजाना हो। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। एनटीए ने महाप्रबंधक स्तर के वरिष्ठ पेशेवर पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 18 स्टेशन बंद हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
10: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
11: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता तथा भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया और कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी परिवर्तन के इस युग में विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी है कि वे ये सुनिश्चित करें कि ज्ञान का मार्गदर्शन विवेक, नैतिकता और करुणा द्वारा किया जाए।
2: टुडे एज द वर्ल्ड इज बीइंग रिसीव्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड अदर रैपिड साइंटिफिक एडवांसेस, यूनिवर्सिटीज लाइक दिस हैज इवन ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट नॉलेज इज गाइडेड बाय विजडम, ethics and compassion. India's national education policy reflects this vision by promoting innovation, research, creativity and international academic collaboration.
1: भारत सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के उन मीडिया दावों को खारिज किया जिनमें भारत पर जानबूझकर बाढ़ लाने का आरोप लगाया गया था।
3: चिनाब नदी में जल प्रवाह में हालिया वृद्धि, 20 से 23 जुलाई के दौरान जम्मू और आसपास के जलग्रहण क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का परिणाम है। नदी के जल प्रवाह में वृद्धि एक प्राकृतिक जल वैज्ञानिक प्रतिक्रिया है और ये भारत द्वारा जानबूझकर किए गए किसी भी प्रयास का परिणाम नहीं है।
1: भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोश्री पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 18 जुलाई को काला सागर से गुजरते समय पोत पर हमला हुआ। हमले में एक भारतीय नाविक की मृत्यु हो गई। पोत पर 3 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे, अन्य 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने आज पुष्टि की कि मोजाम्बिक ध्वज वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर ईरानी जल क्षेत्र में हुए हमले के बाद जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी 28 सदस्य सुरक्षित हैं। दूतावास ने आधिकारिक बयान में एलपीजी टैंकर से जुड़ी घटना की पुष्टि की और कहा कि चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वो स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। लद्दाख के द्रास में स्थित करगिल युद्ध स्मारक ऑपरेशन विजय में भारत की जीत की स्मृति में मनाए जाने वाले 27वें करगिल विजय दिवस के भव्य समारोहों की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: द्रास का कारगिल वॉर मेमोरियल 27वें कारगिल विजय दिवस समारोह के लिए पूरी तरह से तैयार है। शहीदों की याद में बनाए गए इस स्मारक को विशेष रूप से सजाया गया है। 2 दिवसीय समारोह का आगाज आज युद्ध संस्मरण, गौरव में संस्कृति और शौर्य संध्या जैसे कार्यक्रमों के साथ हो रहा है। कल 26 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होंगे। द्रास कारगिल से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं इनायत अली।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंध्र कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 1,15,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या 61 हो गई है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। जंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा टी20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत के स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। सेमीफाइनल में अनाहत ने मिस्र के बाब सामे को 3-1 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: धन्यवाद कनक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त किए जाने की खबर आज के अखबारों की पहली सुर्खी है। हिंदुस्तान ने इसे नीट को लेकर सरकार की बड़ी कार्रवाई बताया है। अमर उजाला लिखता है आक्रोश का असर।

0: एनटीएस से 47 अफसर बर्खास्त। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है, पेपर लीक पर होगा 10 करोड़ रुपए जुर्माना, 10 साल की सजा। संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी, कड़ी सजा का प्रस्ताव। दैनिक जागरण कहता है, कानून बदला कार्रवाई हुई, फिर भी सीजेपी टस से मस नहीं। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अटकी बात। दैनिक भास्कर ने लिखा है, कानून में संशोधन को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी, एनटीए में बदलाव की तैयारी। राजस्थान पत्रिका ने इसे बवाल थामने का प्रयास बताया है। नवभारत टाइम्स ने एनटी पेपर लीक बिल में संशोधन पर अपने संपादकीय में लिखा है, सरकार तेजी से निर्णय लेकर छात्रों को यकीन दिलाने का प्रयास कर रही है कि उनकी आवाज अनसुनी नहीं रह गई है। पत्र लिखता है, केंद्र द्वारा नीट में किए जा रहे सुधारों की सर्वोच्च न्यायालय लगातार निगरानी करेगा। छात्र अब मूलभूत बदलाव चाहते हैं और शीर्ष अदालत की निगरानी से इसमें मदद मिलेगी। सोशल मीडिया प्रसारण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जनसत्ता में सबसे ऊपर है। अनुमति के बिना कार्यवाही को पोस्ट करने पर रोक। लोकसत्य लिखता है, सोशल मीडिया पर नहीं डाल पाएंगे कोर्ट की वीडियो। कक्षा 6 से 8 में कौशल शिक्षा अनिवार्य करने के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्देश को भी पत्र ने स्थान दिया है। अमेरिका द्वारा भारत से आयातित वस्तुओं पर 10% शुल्क लगाए जाने को राजस्थान पत्रिका ने ट्रंप का नया दांव बताया है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। झंडू कुमार ने पुरुषों के हेवीवेट पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सरस्वती चंद्र ह्या फिल्मा खातीर मुकेश हांचो हो आवाज आमी आयकलो. कल्याणजी आनंदजी हांचे संगीत. मोगाळकुप्यानो, तुम्ही जर आयकतात ही गीतां तुमच्या वाहनातल्यान प्रवास करता करता, जाल्यार मतींतसूनय वाहना चौकसायेन चलयात, अपघातांक आमंत्रण दिवं नाकात. हांव उशा आसा तुमचे वांगडा FM रेनबोच्या ह्या प्रसारणातल्यान. FM रेनबो तुम्ही आयकतात 105.4 मेगाहर्ट्स, तशेंच न्यूज ऑन एअर ह्या आमच्या ॲपावरवीं आयकत रावात. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे तिनय चॅनल, महादय चॅनल, विविध भारतीची विज्ञापन वितरावणी सेवा, तशेंच FM रेनबोचें प्रसारण. ल्हानसोच ब्रेक घेवया, रोखडीच परती मेळुया.
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है. जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं. गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं. आप भी लगवा लीजिए. 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार. 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं. PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
0: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटे में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। इस विधेयक के मसौदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर सीजेपी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है। उन्होंने बताया कि सीजेपी ने 3 प्रमुख मांगें रखी हैं और पेपर लीक रोकने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं।
2: बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 इच्छाएं थी।
0: दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल का गठन किया है। ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि ये कार्यबल विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा आयोजित लोक परीक्षाओं से संबंधित अपराधों की त्वरित, पेशेवर और व्यापक जांच करने के लिए जिम्मेदार होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने उनकी विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने एक आधुनिक, पारदर्शी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुकूल कानूनी माहौल बनाने के लिए भारत की अटूट प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आयोग ने समावेशिता, आम सहमति और विविध कानूनी परंपराओं के सम्मान के सिद्धांतों को बनाए रखते हुए नई वास्तविकताओं के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता लगातार दिखाई है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मोजाम्बिक ध्वज वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर ईरानी जल क्षेत्र पर हुए हमले के बाद जहाज पर सवार सभी 28 भारतीय चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। एक आधिकारिक बयान में दूतावास ने एलपीजी टैंकर से जुड़ी घटना की पुष्टि की और कहा कि चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वे स्थानीय अधिकारियों के साथ सक्रिय संपर्क में हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताते हुए कहा कि ये उपलब्धि उनकी अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज से दोबारा शुरू हो गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को ये जानकारी दी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

मौसम विभाग ने कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले

0: अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत सुमार 60 कोटी लोक 5 लाख रुपया मेरेन फुकट उपचाराचे हकदार जाल्यात. आता मेरेन 12 कोटी परस चोड मुफत उपचार केल्यात, जाका लागून गरीब कुटुंबाच्या उपचार खर्चांत सुमार 2 लाख कोटी रुपयाची बचत जाल्या. आयजूच आयुष्मान ऍप डाउनलोड करून आयुष्मान कार्ड तयार करात. अधिक माहिती खातीर 1455 नंबरार कॉल करात.
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले.
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा.
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है.
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया. आप भी लगवा लो.
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें. pmsuryaghar.gov.in पर.

0: Right, that was Usher there with Let It Burn. We're taking a short break to listen to the news relay from Delhi in Hindi. And we'll come back in 5 minutes' time after and begin our third program, which is Pop Time.
1: Namaskar. Akashvani Samachar ke saath, main Vishal Sharma. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं और ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें और किसी भी छात्र का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी। सरकार ने पुनर्परीक्षा की नई तिथि की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने अगले वर्ष से इस परीक्षा को कंप्यूटर आधारित परीक्षा मोड में आयोजित करने का निर्णय लिया है। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल और सरकार के बीच आज नई दिल्ली में अब से थोड़ी देर में तीसरे दौर की वार्ता होगी। बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रश्नपत्र लीक घटनाओं को रोकने के उपायों पर प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर चर्चा होगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीजेपी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने परीक्षा प्रश्नपत्र लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों को नामित किया है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर इन मामलों का निपटारा किया जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रोमानिया में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना करते हुए उन्हें दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया है। बुखारेस्ट में भारतीय समुदाय के लिए आयोजित स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विदेशों में रहने वाले भारतीय अपनी मातृभूमि से गहराई से जुड़े हुए हैं और अपनी उपलब्धियों तथा समर्पण से हर भारतीय को गौरवान्वित करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशोर डैन और अन्य नेताओं के साथ उनकी बातचीत द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस वर्ष की शुरुआत में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इसके शीघ्र कार्यान्वयन से रोमानिया और यूरोपीय संघ के अन्य सदस्य देशों के साथ व्यापार और निवेश के नए रास्ते खुलेंगे। राष्ट्रपति ने रोमानिया के विकास में भारतीय पेशेवरों, उद्यमियों, शोधकर्ताओं, स्वास्थ्यकर्मियों और विद्यार्थियों के बहुमूल्य योगदान की भी सराहना की। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 1 लाख से अधिक लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। सबसे ज्यादा

0: प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ से संबंधित मामलों में 14 और लोगों की मौत हो गई है। इनमें चराईदेव में 7, शिवसागर में 6 और जोरहाट में 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। एक रिपोर्ट।
1: राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 61 हो गई है। प्रमुख नदियां दीखो, दिसंग और धनसरी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे ऊपरी असम में बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। आपदा मोचन बल, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियां राहत सामग्री उपलब्ध कराने, फंसे हुए लोगों को निकालने और बाढ़ प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने में लगी हुई है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित जिलों राहत उपायों को तेज कर दिया गया है। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: गुजरात में राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार गुजरात में इस मानसून में अब तक औसत वर्षा से 52% अधिक वर्षा हुई है। पिछले 24 घंटों में पाटन जिले के संतालपुर तालुका में सबसे अधिक 15 इंच वर्षा दर्ज की गई। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। भारतीय तटरक्षक बल ने 22 जुलाई की मध्यरात्रि से चलाए गए 11 बचाव अभियानों के माध्यम से दमन, दादरा और नगर हवेली तथा दक्षिण गुजरात के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे 170 लोगों को बचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री वैष्णो देवी यात्रा आज फिर से शुरू हो गई है। क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने तत्काल प्रभाव से आंदोलन वापस लेने की घोषणा की है। सीजेपी ने कहा कि हमारी सभी तीन मांगे मान ली गई हैं, इसलिए अब जंतर मंतर से लोग शांतिपूर्वक वापस लौट जाएं। नई दिल्ली में सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के बीच तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने इसकी घोषणा की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि सरकार प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी मामले वापस लेगी।
2: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए दिए गए सीजेपी के सुझावों पर विचार किया जाएगा।
2: हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलिबरेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे।
0: इससे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं और ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी थी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यह बात कही।
3: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे।
0: श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। दिल्ली पुलिस ने लोगों को नई दिल्ली क्षेत्र की ओर जाने से बचने की सलाह दी है क्योंकि पूरे जिले में भारी भीड़ और यातायात जाम देखा जा रहा है। पुलिस ने यात्रियों को निर्देश दिया है कि वे देरी से बचने और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने राजीव चौक, मंडी हाउस, जनपथ और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार खोल दिए हैं। प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया है। श्री शेखावत ने कहा कि सारनाथ शांति, ज्ञान और करुणा का शाश्वत प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये मानवता के लिए भारतीय सभ्यता के गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान को दर्शाता है। कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग एससी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के कानूनी सहयोग को मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हरारे में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरे T20 क्रिकेट मैच में

समाचार मिलने तक भारत ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उनका सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मोगा के पहनो मोहम्मद रफ़ी हंसो स्वर मैं प्यार का दीवाना हूँ एक ही फिल्म से यहाँ करीबी आई मिलन की बेला या फिल्मातली गीता जमिया खत घे हंगा एक लहानसो ब्रेक रोकड़ीस परत मिळूया तर एक वार अशी गीता ह्याच फिल्मातली आणि कोई लाईन डप असत.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को त्यागपत्र सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी और सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। श्री रिजिजू ने देश के शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ बनाने और लाखों युवा विद्यार्थियों को हर निर्णय के केंद्र में रखने के लिए श्री प्रधान के ईमानदार प्रयासों की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहल द्वारा भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार

0: किए जाने के बाद आंदोलन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने की मांग स्वीकार कर ली है। नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमानुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: परीक्षा सुधारों पर सीजेपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सदन के सोमवार के कामकाज सूची में शामिल है। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक पेश करेंगे। प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए ऐतिहासिक पल बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शेखावत ने कहा कि सारनाथ शांति, ज्ञान और करुणा का शाश्वत प्रतीक है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उनका सामना आज रात मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। जीत के लिए 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर ही सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Well, time for me, Velma, to sign off. Thank you so much, dear listeners, for being with me right through this evening. I will be back with you next Saturday, same time, same frequency at 9:15. Till then, you take care. God bless us all. Adios. Moga Sundi.
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना त्यागपत्र सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ उठा न सके, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को त्यागपत्र सौंपने का निर्णय लिया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहल के माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रंका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
2: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
1: श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने की मांग स्वीकार कर ली है। नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमानुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
3: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
1: परीक्षा सुधारों पर सीजेपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सदन के सोमवार के कामकाज सूची में शामिल है। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है।

0: केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये विधेयक पेश करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का काम 46 लाख का आंकड़ा पार कर गया है। घर घर जाकर फॉर्म वितरण का काम भी लगभग पूरा हो गया है और तकरीबन सभी मतदाताओं को फॉर्म मिल गए हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 46,06,924 प्रपत्र डिजिटाइज किए गए हैं, जो दिल्ली के कुल 1,45,10,298 मतदाताओं का 45.53% हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रियों का पांचवा जत्था माउंट कैलाश और मानसरोवर झील की पवित्र यात्रा पूरी कर गैंगटोक सुरक्षित लौट आया है। यात्रा के सफल समापन के उपलक्ष्य में सिक्किम पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने गैंगटोक में सम्मान समारोह आयोजित किया। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। जीत के लिए 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ऐकोपिष्टानो आता मेरेन तुम्ही ऐकताले FM रेंबोचेर वेगवेगळ्यो कार्यावळी। रातची 12:05 जातात आणि इथल्यान आमचे प्रसारण सोंपता। पोतून मेळूया आमी फांतोडेर 5:53 FM रेंबोचेरूच मेळचे 105.4 MHz। ते मेरेन देव तुमकां सगळ्यांक बरी रात दिवं। जय हिंद।